गावे को गुण वडियाइया चार, गावे को विद्या विखम विचार, गावे को साज करे तनखे, गावे को जी लय फिर दे, गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा दूर।

पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोहन लिवलाए तार, कुदरत कौन कहा।

मूर्ख अंध गोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड़ हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

0: मोहब्बत की दास्तां तुमसे तुम तक हर रोज रात 8 बजे आपके अपने जी टीवी HD पर।
1: Leica Radio Network broadcasting across the UK with Asian stations. This is Leica Radio across the Midlands.
2: Cha-cha-cha, let's do cha-cha-cha. Me and you, cha-cha-cha, doo-doo.
3: Cha-cha-cha,
2: ek do cha-cha-cha. Aise, bahut acha.

0: ये है लाइका रेडियो।
1: हर केस में कम से कम एक विटनेस तो होता ही है, मर्डरर खुद।
2: कोलकाता में हमारे घरों के आसपास ये सब हो रहा है। आई एम डॉक्टर संदीप चक्रवर्ती, ओनर साइकियाट्रिस्ट।
3: वन मोर ग्रूसम मर्डर।
1: दोनों विक्टिम्स 20s में, दोनों फीमेल। He's not going to stop. There are many more in danger.
4: Karishma Kapoor in and as Brown, now streaming on Hindi Z5.
5: Fact for the trip? Gifts? Passport?
6: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
5: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
6: Simzy?
5: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
4: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.

0: Celebrating 25 years of Gadar. Monday, 15th June, 6 p.m. onwards. Only on Zee Cinema. Available on Sky 708, Sky Glass 713, Virgin Media 810, BT 395.
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
1: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
2: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
1: high appreciation
2: in Dubai.
3: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
4: एक ऐतिहासिक अवसर पेरिस मा भव्य बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ. आप पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे जहां मळशे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो. डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलीडेज. कॉल करो 02037736333. मंत्रा हॉलीडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा.
5: 2 डेज टू गो. The excitement is building for Atif Aslam live at the O2 on the 14th of June. Get your tickets at AXS. Exclusive radio partnership, Leica Radio.
6: Pepe's, famous for flame-grilled marinated chicken, with over 215 stores nationally. Download the Pepe's app, where you can choose to have your order collected or delivered. Delivery is available in selected stores. Every first order on the Pepe's app, customers receive a 10% discount, plus a chance to spin to win some fantastic prizes. Order at Pepe's today.
7: Punjab, the biggest tunes.

दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मगर मगर

चिदर, चैन, आराम, राती, सुबह, दोपहर और शाम, छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं, देखो ना, दर्द, हिस और जख्म ले जाते हैं, तो आप कुछ नहीं कहते हैं, मगर

0: 7 at Spitfire Island and the A38 at Tyburn House Island. Traffic is looking slow as a result. At Lascelles, the B4515 Gerrard Street remains closed because of a police incident, so traffic's diverting between Melbourne Avenue and Burberry Street. And that's your latest traffic and travel.
1: लिस्ट इतना सस्ता डील देखा है कभी
2: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी
1: समारा ब्लैक टी 1 kg 3.99 एलिफेंट मीडियम आटा 25 kg 14.99 फाल्कन ब्राउन शुगर 3 kg 3.99 लैला बासमती राइस 10 kg 11.99 सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम 1.99 फाल्कन रेड लेंटिल्स 1.5 kg 24.399 पार्ले जी मल्टीपैक बिस्किट 7.99 ग्राम 1.99 फाल्कन लेमन जूस 250 ml 3 for 1 फाल्कन Cash and Carry
2: 82 Assistant Street LE12JU या Rowlatt Hill LE54UN
1: Big deals, big savings while stocks last.

0: listen to the freshest hits added daily on Leica Radio.
1: ZTV HD पर देखिए एक नई कहानी.
2: हमारे पति हमको छोड़ दिए.
1: गंगा, जिसने अपने पति का साथ खो दिया.
2: दिल तो टूट पे किया,
1: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी.
3: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती.
1: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी. गंगा माई की बेटियाँ हर शाम 7 बजे ZTV HD पर. अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जिन मीडिया 809, BT394.
4: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.

0: Breaker Radio.
1: हर केस में कम से कम एक विटनेस तो होता ही है, मर्डरर खुद।
2: कोलकाता में हमारे घरों के आसपास ये सब हो रहा है।
3: I'm Dr. संदीप चक्रवर्ती, owner psychiatrist.
4: One more gruesome murder.
1: दोनों विक्टिम्स 20s में, दोनों फीमेल. He's not going to stop. There are many more in danger.
5: Karishma Kapoor in and as Brown, now streaming on Hindi Z5.

0: ¡Iniciar!
1: Good morning. एक और मनोरंजन, एक और वीकेंड की शुरुआत गीतों के साथ, मनोरंजन की सौगात। माय नेम इज रवि शर्मा एंड आई विद टिल 1 o'clock दिस आफ्टरनून। स्वागत है आपका एंटरटेनमेंट की दुनिया में। थैंक्स टू काजल, शील बी बैक ऑन मंडे मॉर्निंग। और अब से लेकर भाई दोपहर बाद 1 बजे तक मैं हूं आपके साथ। शायरी से करूंगा शुरुआत और फिर उसके बाद एक के बाद एक ऐसा गीत जो आप कानों के रास्ते अपने दिल में उतारेंगे और हमेशा उसे छुपा कर बसा कर रखना चाहेंगे। देखो जहां को मेरी वफा पर ना हंसाना, देखो जहां को मेरी वफा पर ना हंसाना, रखो ना भले दिल में नजर से ना गिराना, अपने करीब मुझको भटकने ना दो भले, लेकिन मेरे ख्यालों से तुम दूर मत जाना। मैं हुक्म तेरा जानकर भी कैसे मान लूं, मुमकिन ही नहीं है मेरे लिए तुमको भुलाना, अब जाके मुझे और कोई प्यास नहीं है, शुक्राना है सजदे में मेरा सर को झुकाना। और सर को झुकाने का मतलब साहब, दिल तो पहले ही झुक चुका है।
2: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. Classic Throwback is brought to you by Leica Gold 2. Bollywood classics non-stop on the new Leica Gold 2. Available at leicaradio.com, via Alexa, or by using our Leica Radio mobile app.
1: मैं हुक्म तेरा जानकर भी कैसे मान लूं, मुमकिन ही नहीं है मेरे लिए तुमको भुलाना, अब्बा की तुम्हें और कोई प्यास नहीं है, शुक्राना है सजदे में मेरा सर को झुकाना।

0: तो साहब बैक टू बैक संगीत के साथ हुई शुरुआत तो आज के मनोरंजन प्रोग्राम की। शुक्रवार वर्ष 2026 के जून महीने की 12 तारीख है भाई। 12 जून और 12 जून के इतिहास में कुछ अच्छी बुरी बातें जुड़ी रहती हैं, जैसे हर एक दिन के साथ कुछ न कुछ जुड़ा होता है। हाँ, आज तो भाई एक तो वो घटना जो हवाई हादसे वाली, अहमदाबाद से एयर इंडिया के हवाई जहाज ने उड़ान भरी और उड़ान भाई आसमान तक नहीं पहुंच पाई, बल्कि थोड़ी दूर उड़ान के तुरंत बाद हवाई अड्डे से कुछ ही गज की दूरी पर प्लेन गिरा। और आज एक बरस हो गया उस घटना को, लोग याद कर रहे हैं, याद कर रहे हैं उस हादसे को, याद कर रहे हैं उन मुसाफिरों को, और याद कर रहे हैं उस व्यक्ति को भी जो इकलौता उस भाई एक्सीडेंट में बच गया। जांच अब भी चल रही है क्या कारण रहा होगा, क्यों ऐसा हुआ। हादसे होते हैं साहब, लेकिन जिंदगी फिर भी चलती रहती है। आज गंभीरतापूर्वक विचार हो रहा है हवाई यात्रा पर। ये घटना आज के दिन घटी थी, लेकिन कुछ बातें ऐसी बाद में भाई सामने आई कि 12 जून का दिन किसी व्यक्ति के लिए बहुत लक्की था और वो उनकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, उन्होंने जानबूझ कर की डेट चुनी थी, छठा महीना 12वां दिन 12 जून का ये दिन भाई। और भी कुछ एक बातें जो है उभरकर सामने आई कि ये 12 जून का दिन, खैर साहब इससे और जुड़ी बात ही और इसके साथ जुड़ने वाले आज के प्रमुख समाचार हम 10:30 बजे आप तक पहुंचाएंगे। उससे पहले लेट्स सी आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रेट क्या चल रहा है रुपयों में, भारतीय करेंसी में।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: SBI UK, State Bank of India UK, today they are giving for £1, how many rupees? Kitne rupaye? 127.2. 127 रुपये और 20 पैसे का रेट चल रहा है भाई। अपनों को अगर आप भिजवाना चाहते हैं तो उनकी सेवाओं का फायदा उठाइए, पर साथ में ये बात भी सुनते जाइए कि अगर आप £1,000 से ज़्यादा भेजते हैं तो एवरी डे देर आर चांस टू विन £75 वाउचर। यस, एंड इफ यू सेंड मोर देन £2,000 देर इज ए चांस टू विन 1 ग्राम गोल्ड कॉइन एवरी वीक। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। लेकिन ये पैसे भाई या तो आप योनो ऐप के माध्यम से या फिर SBI UK की किसी भी ब्रांच में जाकर के भिजवा सकते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: ये है Laika Radio.
3: Laika Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of immigration law, wills and probate, family law, personal injury and other legal requirements.
0: Jo saab, कैसी है आपकी दिलचस्पी फुटबॉल में? वर्ल्ड कप जो है वो शुरू हो चुका है, कल बड़ी शानदार शुरुआत रही, ओपनिंग सेरेमनी हुई और पहला मैच मेजबान टीम ने जीता। वही मैक्सिको में, अमेरिका में और कनाडा में वर्ल्ड कप के मैचेस खेले जा रहे हैं, तो ओपनिंग और पहला मैच मैक्सिको में हुआ और मैक्सिको की टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो है 2-0 से ये मुकाबला, पहला मुकाबला अपने नाम किया। अब साहब जो भी कुछ होगा फुटबॉल जगत में, ये 19 जुलाई तक चलेंगे मैचेस, फाइनल 19 जुलाई को है, तब तक हम आपको जोड़े रखेंगे फुटबॉल से, नतीजों से, ग्राउंड से। और कल के मैच में कहते हैं भाई गोल तो कम हुए लेकिन रेड कार्ड ज्यादा दिखाए गए, वेल ऐसी सब बातें यहाँ सुनने को मिलेंगी। सुनते रहिएगा लाइका रेडियो नेटवर्क।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive.
4: ये है
5: लाइका रेडियो।
6: हर केस में कम से कम एक विटनेस तो होता ही है, मर्डरर खुद।
7: कोलकाता में हमारे घरों के आसपास ये सब हो रहा है।
8: I'm Dr. संदीप चक्रवर्ती, owner psychiatrist.
9: One more gruesome murder.
10: दोनों victims 20s में, दोनों female.
11: He's not going to stop. There are many more in danger.
12: Karishma Kapoor in and as Brown, now streaming on Hindi Z5.
3: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
5: Located in Dubai in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location,
3: high appreciation
5: in Dubai.
13: 105 shows pura karya pachi have Leicester ma avi rahyu che ek dhamakedar international Gujarati comedy natak
14: Jay's Entertainment line avi rahya che sakhna re jo husband ji
13: Leena Shah ane Samir Shah sathe hasiyano full dose 28 June People Center Leicester ma be shandar shows bapore 8 vage ane sanje 7 vage. Tickets booking mate call karo Mr. B07860280655 Mumbai Sandwich Station 07834832249 athwa eventbrite.co.uk. Sakna rejo, husband ji.
15: Surinderella is back for 2026. Beck Theatre Hayes, 22nd and 23rd of July. Arts Depot Barnet, 17th and 18th of October. Theatre Royal Stratford East, 20th to the 31st of October. With smash hit music by the hitmaker PBN, Surinderella is guaranteed dizzy panto fun for all the family. And with tickets starting from £15, click riffgotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Surinderella goes back into the Bollywoods. Radio partner, Leica Radio.
12: None eaten, get ready. Pepe's Piri Piri is firing up something big. Our store is now open. From flame-grilled chicken to mouth-watering wraps, it's bold, it's spicy, it's pure Pepe's. Visit us at 126 Abbey Street, CV 11 5BZ. Pepe's Piri Piri. Pepe-licious.
16: ગડબડ ગોટાળા છે પ્રોબ્લેમ્સ મોટા છે પણ બધું ઓલરાઇટ છે
17: મેં છે ને બેક ટુ બેક ત્રણ મૂવીઝ જોઈ લીધી
16: ગેટ રેડી ફોર અ ફૂલ ઓન કોમેડી કેઓસ વિથ વીરજ ગેલાણી એન્ડ ઉમંગ વ્યાસ ઇન ધ મૂવી બધું ઓલરાઇટ છે
17: બેટર કલાકમાં પાછો આવી જશે ને પછી બધું ઓલરાઇટ થઈ જશે
16: ઇન સિનેમાઝ ઓન 12th ઓફ જૂન ફોર મોર ઇન્ફો વિઝિટ બકરાનિયા મીડિયાઝ ઇન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલ
18: એવું લાગે છે કે પિક્ચર ચાલશે
1: Miss your favorite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. It could be breakfast with Kajal, drive with Raj Badden, the legendary presenters Ravi Sharma, Bali Brambat, or the energetic Radio Wally. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Download the app for free and listen to Leica Radio Midlands when you want.
19: जी टीवी HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से
20: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है
21: खुद से भी ज्यादा
19: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में
21: जो बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है
19: क्या ये नजदीकियां बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा देखिए तुमसे तुम तक हर रात 8 बजे जी टीवी HD पर अवेलेबल ऑन स्काई 707 स्काई ग्लास 714 वर्जन मीडिया 809 BT394
22: It was just another day, a familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend. And he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
1: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
23: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
24: की दुनिया के दोस्तों आप सुन रहे हैं मनोरंजन प्रोग्राम आपके अपने प्रेजेंटर रवि शर्मा के साथ

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma. Like a radio.
3: Like a radio network. अब आप रवि शर्मा से आज की खास खास खबरें सुनिए। लोकल समाचारों में हमें बेलफास्ट तो चर्चा में है ही, लेकिन मैसिव बॉडी ब्लो फॉर स्टार्मर एज टू मिनिस्टर्स रिजाइन इन डिफेंस स्पेंडिंग रूम। रक्षा मंत्रालय के खर्चों को भाई मुद्दा बनाकर के दो मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, तो स्टार्मर सरकार के लिए ये एक और खतरा उन पर मंडराने लगा है। ये यहाँ की बात, लेकिन भाई अंतर्राष्ट्रीय समाचारों पर नजर डालें तो शुरुआत करें भारत से। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से बात करते हुए धारा 370 की बिरयानी मामले पर कहा है कि मनोरंजन के नाम पर यदि कोई समाज की सीमाओं और मर्यादाओं का उल्लंघन करता है तो ये सही नहीं होगा। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्सप्रेशन की आजादी सबको दी है, लेकिन उसके साथ अगर कोई इसका गलत इस्तेमाल करता है तो इसका दुरुपयोग ना हो, इस प्रकार की व्यवस्था भी उसी संविधान ने तैयार की है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है कि स्टैंड अप कॉमेडी सभी को पसंद है, लेकिन मैं खुद भी देखता हूं, उससे मनोरंजन तो होता है, लेकिन मनोरंजन करते करते अगर आप समाज की सीमाओं और मर्यादाओं की जो सीमाएं हैं उनका उल्लंघन करेंगे तो ये सहन नहीं किया जाएगा, ये लोगों के साथ अन्याय होगा। समझ रहे हैं आप भाई, अगर कोई स्टैंड अप कॉमेडी करता है और फिर कुछ इस तरह की बातें अपनी कॉमेडी में इस्तेमाल करता है जो किसी के दिल को ठेस पहुंचा सकती हैं, तो भाई वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। ये कह रहे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस हार गई और उसके बाद उसके कई नेताओं ने तो पार्टी छोड़ दी और ममता बनर्जी भाई थोड़ी सी अलग थलग पड़ती नजर आई, पर इसके साथ ही उसके नेताओं के साथ पब्लिक ने जो बर्ताव किया वो भी चर्चा में है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जगदीश वर्मा बसुनिया ने इल्जाम लगाया है कि टीएमसी के बड़े नेता घर से बाहर तक नहीं निकल पा रहे हैं। उन्होंने कहा दीदी यानी ममता बनर्जी और अभिषेक कौन घर से निकल पा रहा है, अभिषेक निकले तो उन पर अंडे फेंके गए, जो लोग घर से निकलते उनका घेराव करते हैं, पब्लिक गंदे नारे लगाती है, इसलिए कौन आवाज उठाएगा जब हमारे शीर्ष नेता यानी चोटी के नेता जो ऊपर की कैडर के लीडर्स हैं वही सुरक्षित नहीं है तो फिर हमें सुरक्षा कहां से मिलेगी। एयर इंडिया विमान हादसा, एक साल हो गया भाई उस हादसे को, जब अहमदाबाद से एयर इंडिया का वो प्लेन उड़ा था और उसके बाद कुछ ही मिनट्स में सेकेंड्स में हादसे का शिकार हो गया था। उस एक्सीडेंट में बचे अकेले जिंदा जो है सर्वाइवर विश्वास कुमार एक साल बाद भी किन चुनौतियों से जूझ रहे हैं वो खुद बता रहे हैं। अहमदाबाद एयर इंडिया हवाई हादसे के एक साल पूरा होने पर इस हादसे में जीवित बचे एकमात्र शख्स विश्वास कुमार रमेश ने कहा है कि आज भी वो बहुत सारे चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। वो कहते हैं कि लोग देखते हैं कि मैं बच गया हूं, लेकिन वे हमेशा उन चुनौतियों का नहीं देख पाते जो बंद दरवाजों के पीछे बनी रहती हैं, जिनका मुझे सामना करना पड़ रहा है। मुझे अब भी नींद ना आने, एंग्जाइटी, मुश्किल यादों से जूझना पड़ता है। एक साल गुजरने के बाद भी मैं अपनी जिंदगी को फिर से संवारने और अपने परिवार की हर संभव मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। जिंदा रहने के लिए शुक्रगुजार हूं, लेकिन जिंदा बचना काफी नहीं है। इस कहानी का एक हिस्सा अभी भी मैं भुगत रहा हूं। पेट्रोलियम मिनिस्टर ने पेट्रोल पंपों पर किसी ग्राहक को एक दिन में 200 लीटर से ज्यादा हाई स्पीड डीजल बेचने पर रोक लगा दी है। भारत से आई ये खबर है, वहां ये हो रहा है। नए सरकारी आदेश के मुताबिक इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल यूजर्स को पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल खरीदने से रोक दिया गया है। उनसे कहा गया है कि वे अपनी जरूरत का ईंधन बल्क सेल पॉइंट से खरीदें। दिल्ली से खबर आ रही है, राजधानी दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके के तुगलकाबाद एक्सटेंशन में आज सुबह सुबह एक 5 मंजिला बिल्डिंग में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि हादसे में मारे गए लोगों में 22 साल का एक लड़का और दो महिलाएं शामिल हैं, जबकि दो अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस के मुताबिक आग लगने के बाद इमारत से धुएं के गुब्बार देखे गए, जिनमें फंसे 8 लोगों को निकालकर एम्स और सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इंटरनेशनल लेवल पर मशहूर शूटर जसपाल राणा का 49 साल की उम्र में निधन हो गया है। बड़े मशहूर शूटर होने के साथ ही वो भारत की ओलंपिक मेडल विजेता भानु भाकर के कोच भी थे। भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पर उनकी मृत्यु के बारे में लिखा है कि उनके आकस्मिक निधन से मैं स्तब्ध हूं, शोकाकुल हूं, दुखी हूं और एक उत्कृष्ट खिलाड़ी और कोच होने के साथ साथ वे अत्यंत सहज, सरल और बहुत ही नेक दिल इंसान थे, तो मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं। ओमान कोस्ट के पास अमेरिका के हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत पर कांग्रेस पार्टी ने रिएक्ट किया है। भाई आप सुनते रहिए, कल की खबरों में एक जो है समुद्री जहाज पर अटैक हुआ और 3 भारतीय नाव चलाने वाले नाविक जो है वो उसमें शहीद हो गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ओमान के तट पर 3 भारतीय नाविकों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त कर रही है। कह रहे हैं राहुल गांधी, उन्होंने कहा कि हम उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना जाहिर करते हैं और मुश्किल समय में उनके साथ खड़े हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का यह भी कहना है कि अमेरिका की उन लापरवाह सैन्य कार्रवाइयों की भी कड़ी निंदा करते हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में आम नागरिकों के जहाजों और समुद्र कर्मियों की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। अमेरिका ईरान तनाव के बीच बीते 4 दिनों में भारतीय क्रू मेंबर्स वाले कम से कम 3 जहाजों पर अटैक हो चुका है। 8 जून को एमटी मारिवेक्स जहाज पर हमला हुआ था जिसमें 24 भारतीय नाविक सवार थे, हालांकि बाद में इन्हें सुरक्षित बचा लिया गया। ओमान स्थित भारत की एम्बेसी ने इसकी पुष्टि की है। ईरान का भी एक बयान आया है। ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन इस्माइल बाकाई ने खाड़ी इलाके में भारत के कमर्शियल जहाजों पर हुए हमले को लेकर अमेरिका पर निशाना साधा है। भारतीय कमर्शियल जहाजों पर अमेरिका के अटैक्स में कम से कम 3 भारतीय नागरिकों की मौत के बाद ईरान का कहना है कि ये हमले अमेरिका की हथियारबंद लूट और समुद्री डकैती की पॉलिसी का स्पष्ट सबूत हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ जंग खत्म करने के लिए एक शुरुआती समझौता जल्द ही हो रहा है। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से ईरान पर हमने हमले रोक दिए हैं। पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि हमारे समझौते के मुताबिक ईरान के पास कभी भी न्यूक्लियर हथियार नहीं होंगे और इसी मकसद को हासिल करने के लिए हमें इतनी मशक्कत करनी पड़ी थी, इसलिए यह बहुत बड़ी बात है। अब बहुत जल्द समझौते का प्रारूप जो है फाइनल रूप में सामने आने वाला है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
2: Like a radio. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
3: Very good morning. आइए अब लौट आइए संगीत की तरफ।

ये सुनकर बेचारा क्या झूमेगा, कोई खूबसूरत लड़की भाई आपको बाबा कहे क्या होगा, दिल टूटेगा ना। ये वही आवाज है, ये वो अंदाज भाई जिसने कभी गाया था कि दिल के अरमां आंसू में बह गए, सलमा आगा की आवाज। लेकिन ये झूम झूम झूम बाबा शब्द पे आपत्ति है भाई। लो जी, हमारे हितेश पटेल भाई गुजरात से संदेश भेज रहे हैं। क्या लिख रहे हैं बता रहे हैं कि मैं शादीशुदा हूं, मांग भरने की सजा कुछ इस तरह निभा रहा हूं, मांग पूरी करते करते मांग के खा रहा हूं। भुगतो भाई, शादी में दूल्हे को तलवार भी देते हैं, घोड़ी पे भी बिठाते हैं कि जान बचा के भाग सकता तो भाग जा, फिर भी कोई कहेगा कि भाई मुझे तो रिस्क लेना है तो लो भाई भुगतो।

0: कसम पैदा करने वाले की। ये था फिल्म का नाम। सलमा आगा की आवाज में सुना आपने ये गीत। सुनवाया किसने?
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
2: ये है Leica Radio. Holiday breaks are brought to you by South All Travel.
0: और साउथ ऑल ट्रेवल याद दिला रहे हैं, गर्मियों में छुट्टियों का मजा लीजिए और उनके साथ जो है घूम कर आइए कहीं पर किसी अच्छी जगह पर। एक्सप्लोर बीच ब्रेक्स, सिटी एस्केप्स एंड मोर विद हॉलीडे डील्स दैट इंक्लूड फ्लाइट्स, होटल्स एंड एट ऑल प्रोटेक्शन। भाई कहते हैं कि हमारे अनुभव का फायदा उठाइए, बरसों का तजुर्बा है हमारा और भरोसा है लोगों को हम पर, और हम ब्रिटिश ट्रेवल अवार्ड के विनर भी हैं। विजिट साउथ ऑल ट्रेवल और कॉल 0208 574 8410।

0: तैयब अंकल ये क्या कह रहे हैं आपके बारे में, शर्म करो थोड़ी बहुत, प्यार के दुश्मन, क्या टाइटल कमाया है।
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: और लीजिए लैम्फाई के रेट्स नोट कर लीजिए भाई, एक पाउंड के बदले दे आर गिविंग इन इंडियन करेंसी 127.57 रुपीस, पाकिस्तानी 372.58, एक पाउंड के बदले श्रीलंकन रुपए 448.07, बांग्लादेशी टके 164.69, अफगानी 83.84 एंड केनियन शिलिंग्स 173.79.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LAIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Manoranjan with Ravi Sharma. LAIKA Radio.
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: Well, the gold rate. भाई गोल्ड जो है नीचे आ गया था, 98 तक नीचे गिरा था, और भी गिरने की संभावना तो थी, लेकिन अब थोड़ा सा ऊपर चला गया। द गोल्ड एट दिस मोमेंट इज ट्रेडिंग एट द रेट ऑफ 101.32 पाउंड्स।
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 carat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116-266-4278.
3: इतना सस्ता डील देखा है कभी?
4: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी।
3: समारा ब्लैक टी 1 kg 3.99, एलिफेंट मीडियम आटा 25 kg 14.99, फाल्कन ब्राउन शुगर 3 kg 3.99, लैला बासमती राइस 10 kg 11.99, सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम 1.99, फाल्कन रेड लेंटिल्स 1.5 kg 24.399, पार्ले जी मल्टीपैक बिस्किट 7.99 ग्राम 1.99, फाल्कन लेमन जूस 250 ml 3 for 1, फाल्कन कैश एंड कैरी
4: 82 Assistant Street, LE1 2JU, या Rowlatt Hill, LE5 4UN.
3: Big deals, big savings, while stocks last.
5: Citybound Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
6: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
5: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
6: Also explore 2026 cruises
5: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester, or call Citybond Travel on 01162 167 225. We're Atoll Protected.
7: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on

0: लिखिए एक नई मोहब्बत की दास्तां तुमसे तुम तक हर रोज रात 8 बजे आपके अपने जी टीवी HD पर।
1: मनोरंजन विद रवि शर्मा।

स्वागत है मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में। ये लाइका रेडियो नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं लाइका गोल्ड रेडियो। मेरा नाम रवि शर्मा है और मैं आपकी सेवा में दोपहर बाद 1 बजे तक हाजिर हूं। ब्रिटिश समय के अनुसार इस वक्त घड़ियों में 11:05 हुआ चाहते हैं, यूरोप में 12:05 हुआ चाहते हैं। स्वागत है भाई आप सबका, आप जहां भी हमें सुन पा रहे हैं, हमारा साथ निभा रहे हैं। ये समय है चिंतन का, थॉट फॉर द डे, आज का विचार। और आज के चिंतन के लिए हमें ओस्लो नॉर्वे से आलेख प्राप्त हुआ है सुधीर सिंह और ममता सिंह का। कहते हैं, हम पूरे परिवार के साथ आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं, हमारा चिंतन आज प्रोग्राम में शामिल कीजिएगा। सुधीर, यति और कहते हैं भारत से आई हैं हमारी जो है परिवार की एक और सदस्य रेखा। रेखा जी स्वागत है आपका यूरोप में और लाइका रेडियो परिवार में, आप भी जुड़िए हमारे साथ। भारत लौटकर भी आप हमारे कार्यक्रम सुन सकती हैं, पूरी दुनिया में पहुंचते हैं हमारे प्रोग्राम। तो सुधीर जी और ममता जी, आपका भेजा आलेख सर आंखों पर, प्रस्तुत है आज का विचार, थॉट फॉर द डे यानी चिंतन।

आज के चिंतन में हम कुछ ऐसे व्यक्तित्वों का जिक्र करना चाहते हैं जो राजनीति में नजर आते हैं लेकिन राजनीति नहीं करते हैं। राजनीति शब्द अपने आप में बड़ा बदनाम सा हो रहा है। रावण के द्वारा ठुकराए जाने पर विभीषण राम जी के कैंप की तरफ आते हैं। उन्हें इस तरह आता देख करके, युद्ध का माहौल था, जंग के दिन थे, लड़ाई चल रही थी हनुमान जी की सेना और रावण की सेना में, तो जो गुप्तचर थे, गुप्तचर यानी जो जासूस थे, उन्होंने पता लगाया और कहने लगे, शत्रु का भाई हमारे कैंप की तरफ आ रहा है, प्रभु आप आदेश दें तो उसे बंदी बना लें, उसे कैद कर लें। राम जी ने कहा, क्यों प्रभु, शत्रु का भाई है। भाई जरूर है लेकिन वो विचारधारा का मतभेद होने के कारण हमारी तरफ आ रहा है, वो हमसे युद्ध करने नहीं, हमारी शरण में आ रहा है और शरण में आए हुए को हम प्रोटेक्शन देते हैं, स्नेह देते हैं, प्यार देते हैं, दुत्कारते नहीं हैं, गिरफ्तार नहीं करते हैं। पर प्रभु राजनीति तो यह कहती है कि शत्रु का कोई भी व्यक्ति हमारी सीमा के आसपास, हमारे कैंप के नजदीक आए तो उसे अरेस्ट किया जाना चाहिए। श्री राम ने कहा, वो राजनीति है, हम राजनीति नहीं, हम रामनीति करते हैं, आए हुए को अपनाना। और भी भीषण आए, शत्रु का भाई, तो राम जी ने आते ही उन्हें संबोधित किया, आओ लंकेश, लंकेश यानी लंका के राजा, पधारो, स्वागत है आपका। अब लंका के राजा तो रावण थे उस समय, और उनका भाई तो रावण के द्वारा लात मार करके दरबार से निकाले गए विभीषण को लंकेश कह के बुलाया, तो बानर और भालुओं की समझ में आया कि श्री राम ने ऑलरेडी फैसला कर लिया है कि युद्ध जीतने के बाद लंका का राज्य विभीषण को सौंप दिया जाएगा। अब देखिए, राम की नीति, वो वनवासी है और वनवासी ही रहना चाहते हैं, वो किसी भी जंग को जीत कर किसी राज्य पर कब्जा नहीं चाहते, सत्ता नहीं चाहते। उन्होंने किष्किंधा में बाली को मारकर सुग्रीव का राज्य, सुग्रीव को सौंप दिया, उस पर अपना अधिकार नहीं जमाया। लंका में रावण को मारकर लंका का राज्य विभीषण को सौंप दिया, उस पर कब्जा नहीं जमाया। अरे, अपना ही राज्य छोड़कर के, त्याग करके जो अयोध्या से आए हैं वो किसी और के राज्य पर क्यों अधिकार करेंगे, वो वनवासी का जीवन बिताएंगे, पिता की आज्ञा निभाएंगे। सत्ता के भूखे लोग जंग का कारण बनते हैं और सत्ता को त्याग करने वाले आदर्श बनते हैं। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ सत्ता की भूख के कारण, लेकिन एक आदमी ऐसा था जिसे सत्ता की बिल्कुल भी चाहत नहीं थी। आजादी मिलते ही मोहम्मद अली जिन्ना बने पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल। उन्हें सत्ता चाहिए थी, मिल गई। सही माने तो सत्ता के लिए ही उन्होंने बंटवारा करवाया। उधर नेहरू बने भारत के प्रधानमंत्री, और जब लॉर्ड माउंटबेटन ने पूछा कि यहां दिल्ली में इतना बड़ा सेलिब्रेशन चल रहा है, सारे नेता नजर आ रहे हैं पर गांधी नजर नहीं आ रहे, ये गांधी कहां हैं, तो नेहरू का जवाब था, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू कहते हैं, गांधी जहां है भारत वहां है। और पता लगा साहब, बंगाल में कहीं हिंदू मुस्लिम झगड़ों को सुलझाने के लिए वो बुजुर्ग, वो संत, वो बूढ़ा आदमी लाठी टिकाए चबूतरे पर बैठा लोगों को समझा रहा है, प्यार से रहो, क्योंकि एक प्यार ही है जो दुनिया में रहेगा। ये सत्ता की भूख ले बैठेगी, ये लड़ाई झगड़े, वैर विरोध,
ये बंटवारे, ये टूट फूट, इसमें सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं है। मिलजुल कर रहो, जुल्म का और जालिमों का खात्मा होगा। दुनिया में संत होंगे, कोई महात्मा होगा जो जीना सिखाएगा।

न जुल्म न जालिम का यह अधिकार रहेगा, दुनिया में कुछ रहेगा तो बस प्यार रहेगा। प्यार बांटिए, प्यार लूटिए। आज का चिंतन, आज का विचार, जिसके लिए आलेख ओस्लो नॉर्वे से हमें सुधीर सिंह और ममता सिंह ने भिजवाया।

0: दुनिया में कुछ रहेगा तो बस प्यार रहेगा, आज का चिंतन आज का विचार रहेगा।
1: चिंतन चिंतन,
0: आज के चिंतन के साथ गीत मोहम्मद अजीज, अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में था। और आलेख फिर याद दिला दें आपको कि ओस्लो नॉर्वे से भिजवाया हमें सुधीर और ममता ने, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई स्वागत रेखा जी को जो भारत से आई हैं ओस्लो में, इस समय ये प्रोग्राम सुन रही हैं। और यति बिटिया आपका भी जोरदार स्वागत। याद दिला दें आपको भाई चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद, ब्रिटिश 11 बजे की खबरों के बाद। यूरोप में इस समय 12 बज चुके हैं, दोपहर हो गई है। तो वेरी गुड आफ्टरनून डियर पीपल लिसनर्स, प्यारे प्यारे श्रोता। और भाई स्वागत है आप सबका, जुड़े और लोगों को भी जोड़े, चिंतन सुने 11 बजे की खबरों के बाद ब्रिटिश समय के अनुसार। आज का चिंतन आज का विचार अब समाप्त होता है।

0: अमजद फरीद साबरी और साथी सूफिया नकल हम सुन रहे थे भाई। आज बैक टू बैक संगीत के तहत कार्यक्रम के इस दौर में पहला गीत था तेरे संग प्यार में नहीं टूटना, दैट वाज टेकन फ्रॉम द फिल्म नागिन ऑफ 1976 एंड दिस वाज फ्रॉम द फिल्म हल्ला बोल। गीत संगीत की महफिल सजी है लाइका रेडियो नेटवर्क पर एंड माय नेम इज रवि शर्मा। दोपहर बाद एक बजे तक मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ।
1: दिस इज लाइका रेडियो अक्रॉस द मिडलैंड्स। ये है
2: लाइका रेडियो
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, कुछ कहते हुए भी डरता हूं। कहीं भूल से ये ना समझ बैठो कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। अगर ऐसा समझोगी तो ठीक ही समझोगी।

लाइका रेडियो पंजाबी, लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ते, laikaradio.com ते Alexa प्ले लाइका रेडियो पंजाबी पंजाबी. This is Laika Radio, part of the Laika Radio Network. This is the Laika Radio Network, broadcasting across the UK. Spring into the sunshine on Laika Radio Network.

0: बड़े सॉन्ग में गीत तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसके बजाने का अवसर मौका भी देखा जाना चाहिए। मुझे याद आ रहा है एक शादी में बज रहा था ये गीत, ठीक उस समय जब दुल्हन दूल्हे के गले में माला डाल रही थी, गाना बज रहा था मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा। बताइए क्या तालमेल बनता है भाई। हम कोशिश करते हैं कि जो बात कर रहे हो गीत उससे कुछ मिलता जुलता हो, माहौल वैसा हो, एटमोसफियर। अब देखिए जब दुल्हन विदा हो रही थी, बारात जानी थी दुल्हन को लेके, भाई दूल्हा गाड़ी में बैठा, दुल्हन बैठी, और जैसे ही ड्राइवर ने गाड़ी ऑन की तो गाना बजा गाड़ी में, हम आज अपनी मौत का सामान ले चले, दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चले, हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। ले जा भाई मौत का सामान, ले जा ले जा। थैंक यू वेरी मच। बैक टू बैक संगीत सुनवा करके प्रोग्राम के तीसरे और अंतिम दौर का हमने आगाज कर लिया है। अब एक बार फिर से बता दें पाउंड का रेट क्या चल रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके में।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with YONO SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Well, SBI UK. भाई आज का इस समय का रेट वो दे रहे हैं फॉर वन पाउंड 127.2 रुपीज मैक्सिमम। लेकिन ये तो भाई आप उनकी किसी भी ब्रांच में जाकर या SBI YONO ऐप के माध्यम से भिजवा सकते हैं, पर अगर आप 1000 पाउंड से ज्यादा भिजवाते हैं तो एवरी डे दे आर गिविंग 75 पाउंड वाउचर जीतने का चांस, और अगर आप 2000 पाउंड से ज्यादा की राशि भिजवाते हैं तो देयर इज अ चांस ऑफ विनिंग 1 ग्राम गोल्ड कॉइन एवरी वीक। Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio. Women's Cricket Updates, presented by Carmel Prabhakar, are brought to you by TW Pays. If you're overpaying on your card terminal, we'll show you the truth and cut your costs.
2: And RoboThink, where children don't just use technology, they learn to build it. robothink.co.uk/Leica.
0: और बहनों भाइयों जबरदस्त मुकाबले शुरू हो रहे हैं ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के। कमल प्रभाकर जो क्रिकेट के एक्सपर्ट्स हैं और भाई हमारे सहयोगी, वो मैच के बारे में जो है रिपोर्ट्स और भाई स्कोर संभावनाएं, कैचेस, मैचेस जीतने के चांसेस किसके हैं, ये सारी जानकारी देंगे। तो क्योंकि पहला मैच जो है आज T20 वर्ल्ड कप, महिला वर्ल्ड कप का, वो शाम को शुरू होगा और कमल उपलब्ध रहेंगे मैच के दौरान जानकारी देने के लिए। लेकिन बता दूं आपको कि मैं तो जब वर्ल्ड कप शुरू नहीं हुआ था, आज से शुरू हो रहा है, मैं तो तब भी महिलाओं के क्रिकेट की चर्चा करता रहा हूं, क्योंकि मैं ही हूं एक जो महिलाओं की कदर करता है। But it will be very interesting. Today's match is between England and Sri Lanka. Yes, England versus Sri Lanka. Edgbaston, yani Birmingham में जो Edgbaston का ground है वहां पर ये match खेला जाएगा। T20 World Cup, Women's World Cup, बहुत दिलचस्प होगा जरूर भाई। अगर मैदान में जाके नहीं देख सकते हैं तो अपने रेडियो के आसपास रहिएगा, हम वहां का हाल, वहां की स्थिति जो है आप तक पहुंचाते रहेंगे।
1: This update was brought to you by TW Pays. Visit TWPays.com/Leica for a chance to win a free card terminal. T's and C's apply.
2: And RoboThink. This summer, give your child a head start in AI, robotics and coding. Places are limited. Save 20% on full week summer camp bookings with code LEICA20 at participating locations. Book now at robothink.co.uk. Terms apply.
3: Lister, itna सस्ता डील देखा है कभी?
4: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी।
3: समारा ब्लैक टी 1 kg 3.99, एलिफेंट मीडियम आटा 25 kg 14.99, फाल्कन ब्राउन शुगर 3 kg 3.99, लैला बासमती राइस 10 kg 11.99, सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम 1.99, फाल्कन रेड लेंटिल्स 1.5 kg 24.399, पार्ले जी मल्टीपैक बिस्किट 7.99 ग्राम 1.99, फाल्कन लेमन जूस 250 ml 3 for 1, फाल्कन Cash and Carry,
4: 82 Assistant Street, LE12JU, या Rowlett Hill, LE54UN.
3: Big deals, big savings, while stocks last.
5: Go Bang London teams up for the Atif Aslam concert in association with Leica Radio Network. for you to win a 5 gram gold coin. If you've bought a group of 5 tickets or more to the concert, you could be in with a chance to win this golden prize. Just attend on the night and wait for the host to announce the ticket number or your name. If it's yours, you'll be walking away richer thanks to Gold Bank London. Atif Aslam, live at the O2, Sunday the 14th of June. T's and C's apply.
6: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
2: Atif Aslam, live in the UK.
6: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
2: Book your tickets now at AXS.
6: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
2: Exclusive radio partner, Leica Radio.
7: हर केस में कम से कम एक विटनेस तो होता ही है, मर्डरर खुद।
8: कोलकाता में हमारे घरों के आसपास ये सब हो रहा है। I'm Dr. Sandeep Chakraborty, I'm a psychiatrist.
9: One more gruesome murder.
7: दोनों विक्टिम्स 20s में, दोनों फीमेल। He's not going to stop. There are many more in danger.
10: Karishma Kapoor in and as Brown, now streaming on Hindi Z5.
11: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
12: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
11: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
12: गारंटेड
11: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
12: फोन 0208574 8410।
11: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
13: Location, location, location.
14: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
13: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
14: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
13: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
14: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
13: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
14: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location,
13: high appreciation
14: in Dubai.
15: गड़बड़ घोटाला छे, problems मोटा छे, पर बदु alright छे.
16: मैंने ने back to back तीन movies जोई ली थी.
15: Get ready for a full on comedy chaos with Veeraj Ghelani and Umang Vyas in the movie बदु alright छे.
16: बेहतर कलकमल पाचो आवे जैसे नम पच्ची बदु alright थे जैसे.
15: In cinemas on 12th of June. For more info, visit Bakrania Media's Instagram handle.
17: मनोरंजन with રવિ શર્મા.
18: ઐતિહાસિક અને દિવ્ય અવસર. પેરિસમાં ભવ્ય BAPS સ્વામિનારાયણ મંદિરના ગ્રાન્ડ ઓપનિંગમાં દર્શનનો લાભ. આ પવિત્ર યાત્રામાં જોડાઓ આપના પરિવાર સાથે, જ્યાં મળશે શાંતિ, ભક્તિ અને આનંદ, અને સાથે આઈફિલ ટાવર, સેન રિવર ક્રુઝ અને પેરિસ સિટી ટૂર નો આનંદ માણો. ડિપાર્ચર 5 સપ્ટેમ્બર ના મંત્રા હોલિડેઝ. કોલ કરો 0203-773-6333. મંત્રા હોલિડેઝ. વોટ્સ યોર ટ્રાવેલ મંત્ર?
19: It was just another day, a familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend, and he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
20: Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro station, playing Bollywood classics 24/7 and with your favorite presenters live? Get the tune-in details at leicagold.com. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
0: और आप जानते हैं कि Artist of the Week इस सप्ताह हैं किशोर कुमार.

0: Good Track. Brought to you by Derry Valley.
1: Soft and tender, like grandma's warm hug, Derry Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit derryvalley.net.
2: ये गीत सुनाने से पहले बता दूं आपको कि सप्ताह के आर्टिस्ट किशोर कुमार की आवाज में आपने बहुत सारे गाने सुने और अभी तो बहुत सुनेंगे क्योंकि संडे तक वही बोलबाला रहेगा उनका और अगले सप्ताह कोई और नए कलाकार होंगे आर्टिस्ट ऑफ द वीक, तो फिर उनकी आवाज गूंजेगी या उनकी फिल्मों से जुड़े गीत आप सुन पाएंगे। राइट नाउ हियर इज द सॉन्ग। मोहम्मद रफी साहब और मन्ना डे के स्वर जब मिलते हैं तो इस तरह के गीत पर्दे पर चलते हैं, फूलते फलते हैं।

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Women's Cricket Updates, presented by Carmel Prabhakar, are brought to you by TW Pays. If you're overpaying on your card terminal, we'll show you the truth and cut your costs.
2: And RoboThink, where children don't just use technology, they learn to build it. robothink.co.uk/Leica.
3: और भाई कमल प्रभाकर से मेरी बात हुई, बड़े एक्सपर्ट्स हैं क्रिकेट के, भाई एसेक्स के लिए खेलते रहे हैं और कमल प्रभाकर कह रहे हैं मैं तैयार हूं, शाम को मैच शुरू होगा 6:30 बजे वर्ल्ड कप, विमेंस वर्ल्ड कप का जो पहला मैच है वो श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा एज वेस्टर्न के मैदान में। और बहन भाइयों वहां से एक एक गेंद, एक एक रन, एक एक विकेट और भाई जो भी खास बातें होंगी मैच की वो आप तक पहुंचाएंगे कमल प्रभाकर। तो आप जुड़े रहिएगा Leica Radio Network पर Leica Gold के साथ।
0: This update was brought to you by TW Pays. Visit twpays.com/Leica for a chance to win a free card terminal. T's and C's apply.
2: And RoboThink. This summer, give your child a head start in AI, robotics and coding. Places are limited. Save 20% on full week summer camp bookings with code LEICA20 at participating locations. Book now at robothink.co.uk. Terms apply.
3: और भाई कुछ एक जानकारी हमारे पास है, एक तो लाइका रेडियो नेटवर्क टीम सब विदत तारिक हलाल फॉर द ओपनिंग ऑफ देयर न्यू रेनर्स लेन ब्रांच ऑन वेंसडे 17th of June लोकेटेड एट 297 रेनर्स लेन पिनर HA5 5EJ। और इसके अलावा भाई एक और जानकारी वो है उस शो के बारे में जो काफी चर्चित है, काफी लोकप्रिय है, हमारे राम, लाइका रेडियो नेटवर्क टीम सब विद ZTV फॉर दिस स्टेज शो हमारे राम, टेकिंग प्लेस बिटवीन 9 and 12 July एट लंडन एवेंटिम अपोलो। इट स्टार्स आशुतोष राणा एज रावण एंड राहुल बुचर एज राम। देखना मत भूलिए, अपनी टिकटों का इंतजाम कर लीजिएगा भाई समय से।
4: Leica Radio. This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.
5: मुझे कुछ कहना है,
3: मुझे नहीं सुनना है,
6: कुछ कहना है,
5: मुझे कुछ कहना है,
6: मुझे भी कुछ कहना है,
5: पहले तुम,
6: पहले तुम,
5: पहले तुम,
6: पहले तुम,
5: पहले तुम,
6: तुम,
5: तुम,
6: तुम,
5: तुम,
6: तुम,
5: तुम,
6: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
5: अच्छा मैं कहती हूँ

0: मुझे कुछ कहना है,
1: मुझे भी कुछ कहना है।
0: पहले तुम,
1: पहले तुम,
0: पहले तुम,
1: पहले तुम,
0: पहले तुम।
2: Holiday breaks are brought to you by South All Travel.
3: साउथ ऑल ट्रेवल का संदेश भाई नोट कर लीजिए, कह रहे हैं कि इन गर्मियों में छुट्टियों का प्रोग्राम बनाइए, हमारे पास आइए, हम बना के देंगे प्रोग्राम आपको। भाई साउथ ऑल ट्रेवल कहते हैं एक्सप्लोर बीच ब्रेक्स, सिटी एस्केप्स एंड मोर विद हॉलीडे डील्स दैट इंक्लूड फ्लाइट्स, होटल्स एंड एटॉल प्रोटेक्शन। 40 वर्षों के तजुर्बे का फायदा उठाइए और भाई जो विश्वास हमने लोगों के हृदय में जगाया है उस पर आप भी भरोसा कीजिए, हमारे से प्रोग्राम लीजिए। भाई वी आर द विनर्स ऑफ द ब्रिटिश ट्रेवल अवार्ड, इसलिए विजिट साउथ ऑल ट्रेवल और कॉल 0208574840।
2: Holiday breaks were brought to you by South All Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. This is Leica Radio. Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
4: 105 शोज पूरा कर्या पछी हवे लेस्टर मां आवी रह्यु छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी नाटक
5: जेज एंटरटेनमेंट लईने आवी रह्या छे सखना रे जो हसबंड जी
4: लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनो फुल डोज 28 जून पीपल सेंटर लेस्टर मां बे शानदार शोज बपोरे 8 वागे अने सांजे 7 वागे टिकट्स बुकिंग माटे कॉल करो मिस्टर B07860280655 मुंबई सैंडविच स्टेशन 07834832249 अथवा eventbrite.co.uk. Sakana Radio, Hasbandji.

0: इस गीत को सुनकर के आपको एक खूबसूरत अभिनेत्री याद आएगी भाई। साउथ की ये एक्ट्रेस जिसने बड़े बड़े साउथ के सितारों के साथ काम किया और नॉर्थ के भी, याद करिए पद्मिनी। आज दुनिया में होती तो भाई वो अपना जन्मदिन मना रही होती है। नहीं जन्मदिन मालूम नहीं है भाई, कहते हैं कि आई डोंट नो, लेकिन पद्मिनी की याद आई। पद्मिनी पर ये गीत पिक्चराइज हुआ था और पद्मिनी पर कुछ और भी गीत, लेकिन वो अभिनेत्री उत्तर भारत की यानी हिंदी फिल्मों में कम नजर आई। साउथ में तो साहब जो उस समय के बड़े बड़े सितारे थे जैसे कि रामचंद्रन, एमजी रामचंद्रन, शिवाजी गणेशन, एनटी रामाराव, अरे साहब किसके साथ काम नहीं किया। और उत्तर में हिंदी फिल्मों में राज कपूर, शम्मी कपूर, प्रेम नजीर, राजकुमार, जेमिनी गणेशन, भाई बहुत फिल्मों में नजर आई थी। वैसे ही बस उनका ख्याल आया, याद आई, मुझे लगा कि आज उनका जन्मदिन भी है। है तो भाई, वो तो दुनिया में है नहीं, लेकिन उनके चाहने वाले बहुत हैं, तो याद कर लेते हैं उन्हें।
1: ये है लाइका रेडियो।
2: Mom always said, beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath, over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care, Siddhayu. Now available in Falcon Cash and Carry, Leicester and Nottingham. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
4: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
3: High appreciation.
4: In Dubai.
0: वेडिंग सेलिब्रेशन, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 020-8839-0880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
5: सिटी बॉन्ड ट्रेवल प्राउडली प्रेजेंट्स यात्रा टूर 2026.
6: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
5: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra tour.
6: Also explore 2026 cruises
5: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester or call City Bond Travel on 01162 167 225. We're Atoll Protective.
7: Maharaja Tours presents Diwali Dhamaka 2026, 12-night Diwali or Navratri cruise on MSC Virtuosa. Bhajan jamming, Mehfil nights, Ras Garba, Bollywood entertainment or full-on maza. Spain or Portugal ke sunshine ports, full board cruise or Indian khana included. From only £1,179 per person, visit maharajatours.co.uk ya call 07956-154-846.
8: Save the date. Friday 3rd to Sunday the 5th of July. An Indian summer is back.
9: Presented by Inspirate. Exclusive radio partner, Leica Radio Midlands.
8: For sponsorship inquiries, call Leica Radio on 0116 471 069.

0: Listen to Laika Gold 2 on Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Gold 2. Manoranjan with Ravi Sharma.
1: राजसी तो बहन भाइयों, समय हो गया है कार्यक्रम में अब आपसे इजाजत लेने का। बाली भाई विल बी विद यू आफ्टर 1 o'clock न्यूज। मुझे अगली मुलाकात तक के लिए इजाजत दीजिए। सोमवार को मिलते हैं 10 बजे की खबरों के बाद। हैव ए सुपर्ब डे। बाय बाय।

0: उषा खन्ना जी ने कंपोज किया, उषा खन्ना जी ने गाया और इसमें मेल वर्जन भी है।
1: दिस इज लाइक अ रेडियो अक्रॉस द मिडलैंड्स।
0: फिल्म है कब, क्यों और कहां। कब नियरली 2 बजे ये गाना सुनाई दे रहा है। क्यों, क्योंकि इट्स अ सिजलिंग फ्राइडे, एंजॉय योरसेल्फ। कहां, लाइका गोल्ड पे।

ये गाना मैं फरीदा गुलाम अली की नजर करता हूँ। आशा भोसले और लता मंगेशकर, वी हैव बीन डूइंग अ ट्रिब्यूट ऑफ नन अदर देन पद्मिनी। होप यू एंजॉयड।

0: करो। कितना प्यारा गाना है। सॉरी मुझे हंसी आ रही है बिकॉज जब वीकेंड आता है एंड सैंडी शाह कम्स एंड डज अ बिट ऑफ बैंटर ही गेट्स मी क्रैकिंग यू नो सो ही मेड माय वीकेंड एंड आई एम गोना लीव यू विद हिम सैंडी शाह ऑन ड्राइव टाइम एंड आई एम गोना ड्राइव होम नाउ एंड राजपतन ऑन लाइका रेडियो मिडलैंड्स बाय बाय।
1: The Leica Radio Network is now also streaming live on the Nation Player app. Download on iOS and Android mobile devices.
2: This song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.
0: I got news for you. It's Annika, 4 to 7 on Leica Radio Midlands. Good luck, Annika.
3: That's it.

0: लिखे एक नई मोहब्बत की दास्तां, तुमसे तुम तक हर रोज रात 8 बजे आपके अपने जी टीवी HD पर।
1: कुछ एक्साइटिंग खाने का मन है तो आओ एग जंक्शन लेस्टर, यहाँ मिलेगा सिजलिंग एग कीमा, फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर्स। सबके लिए कुछ न कुछ है। 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS पर। चाहे डाइन इन करो, टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरी से मंगवाओ, कॉल कीजिए 0116-332-5100। एग जंक्शन जो वेम्बली और किंग्सबरी में तो है, अब लेस्टर में, जहाँ हर बाइट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी।
2: Miss your favorite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores.
3: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
4: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org, assuming you want to get noticed.
2: Leica Radio Network. Broadcasting across the UK with Asian stations. Did you know you can advertise on this station, Leica Radio Midlands, plus our other offerings, Leica Radio Greater London, Leica Gold Greater London, and Leica Radio Greater Manchester. As a combined network, we can give you a competitive rate to spread your message to a wider audience. Call 0116 471 0697 or email sales@leicamedia.co.uk. A Leica Radio classic plays now.

0: This weekend, join the Disha Rice Tasting at Falcon Store, Leicester, Worley Superstore, Birmingham, and Umrah Supermarket, Walsall Town. Taste the premium quality in every grain. Disha Basmati
1: Rice. Maharaja Tours presents Diwali Dhamaka 2026. 12-night Diwali or Navratri cruise on MSC Virtuosa. Bhajan jamming, Mehfil nights, Ras Garba, Bollywood entertainment or full-on maza. Spain or Portugal ke sunshine ports, full board cruise or Indian khana included. From only £1,179 per person, visit maharajatours.co.uk ya call 07956-154-846.
2: हर केस में कम से कम एक विटनेस तो होता ही है, मर्डरर खुद।
3: कोलकाता में हमारे घरों के आसपास ये सब हो रहा है। I'm Dr. संदीप चक्रवर्ती, I'm a psychiatrist.
4: One more gruesome murder.
2: दोनों विक्टिम्स 20s में, दोनों फीमेल। He's not going to stop. There are many more in danger.
0: Karishma Kapoor in and as Brown, now streaming on Hindi Z5. Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
5: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
0: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
5: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
0: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
5: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
0: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
6: Pepe's Piri Piri is turning up the heat. Pepe's Piri Piri on Belgrave Road, Leicester. With grills fired up and ready to serve your flame-grilled Piri Piri favourites. Pepe's Piri Piri. Definitely worth a visit.
7: Save the date. Friday 3rd to Sunday the 5th of July. And Indian summer is back.
8: Presented by Inspirate. Exclusive radio partner, Leica Radio Midlands.
7: For sponsorship inquiries, call Leica Radio on 0116 471 0697.
8: Or sales at leicamedia.co.uk.
9: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
10: जी टीवी एच डी पर देखिए एक नई कहानी।
11: हमारे पति हमको छोड़ दिए।
10: गंगा, जिसने अपने पति का साथ खो दिया,
11: दिल तो टूट पे किया,
10: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी।
12: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती।
10: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी, गंगा माई की बेटियाँ, हर शाम 7 बजे जी टीवी एच डी पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जिन मीडिया 809, BT394।
13: मेरे पापा को गुलाब जामुन बहुत पसंद है।
14: ऑर्डर ऑनलाइन एट pujasweets.com। फ्रॉम बर्फी, लड्डूज, गुलाब जामुन टू समोसा एंड गाठिया, फ्रॉम केटरिंग स्टार्टर्स टू डिजर्ट, पूजा स्वीट्स एंड सेवरीज।
15: अभी कॉल कीजिए 0116-202-1222 और विजिट मेल्टन रोड LE4 5EA।
14: पूजा स्वीट्स एंड सेवरीज।
0: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर। ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी, सब कुछ फ्रेश और टेस्टी। लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS। कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर्स लेस्टर में।
9: Bollywood's biggest 90s songs, non-stop.

0: Spiker Radio. 105 shows pura karya pachi have Leicester ma avi rahyu che ek dhamakedar international Gujarati comedy natak
1: Jay's Entertainment line avi rahya che sakhna re jo husband ji
0: Leena Shah ane Sameer Shah sathe hasyano full dose 28 June People Center Leicester ma be shandar shows bapore 8 vage ane sanje 7 vage tickets booking mate call karo Mr. B07860280655 Mumbai Sandwich Station 07834832249 athwa eventbrite.co.uk सकना रह जो हस्बैंड जी
2: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए
3: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों
2: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी
3: गारंटेड
2: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे
4: साउथ हॉल ट्रेवल
3: फोन 02085748410
4: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410 एट ऑल प्रोटेक्टेड
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
6: Located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 02039635757 Greens by Danube Prime location
5: High appreciation
6: In Dubai
7: वेडिंग सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन
8: Punjab, the biggest tunes.

0: Radio.
1: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
2: Relax, I've booked the Uber already.
1: How? My roaming isn't even working yet.
2: I switched to Simsy before we left London.
1: Simsy? Since when are you the tech expert?
2: Since I decided I want a stress-free holiday.
3: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable dates in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
4: T's and C's apply.
5: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage, 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith, Hamari Ram.
2: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code Hamari Ram 10 for a 10% discount on all shows and tickets.
5: Exclusive radio partner, like our radio.
6: 105 શોસ પૂરા કર્યા પછી હવે લેસ્ટરમાં આવી રહ્યું છે એક ધમાકેદાર ઇન્ટરનેશનલ ગુજરાતી કોમેડી નાટક
7: જેઝ એન્ટરટેઇનમેન્ટ લઈને આવી રહ્યા છે સખણા રેજો હસબન્ડજી
6: રીના શાહ અને સમીર શાહ સાથે હાસ્યનો ફૂલ ડોઝ 28 જૂન પીપલ સેન્ટર લેસ્ટરમાં બે શાનદાર શોઝ બપોરે 8 વાગે અને સાંજે 7 વાગે ટિકિટ્સ બુકિંગ માટે કોલ કરો મિસ્ટર B07860280655 મુંબઈ સેન્ડવિચ સ્ટેશન 07834832249 અથવા eventbrite.co.uk
8: मेरे पापा को गुलाब जामुन बहुत पसंद है
9: ऑर्डर ऑनलाइन एट poojasweets.com फ्रॉम बर्फी लड्डू गुलाब जामुन टू समोसा एंड गाठिया फ्रॉम केटरिंग स्टार्टर्स टू डिजर्ट पूजा स्वीट्स एंड सेवरीज
10: अभी कॉल कीजिए 0116-202-1222 और विजिट मेल्टन रोड LE4 5EA
9: पूजा स्वीट्स एंड सेवरीज
11: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी सब कुछ फ्रेश और टेस्टी लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड LE4 5AS कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर लेस्टर में
5: ये है लाइका गोल्ड

0: Mica Radio.
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
1: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
2: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 02039. 635757. Greens by Danube. Prime location.
1: High appreciation.
2: In Dubai.
3: कोई भी रिश्ता जब नया होता है ना, exciting होता है क्योंकि वो नया होता है.
4: From friends to lovers to total chaos, the perfect cocktail is back.
5: दोस्ती की कोई value नहीं है ना तुझे, उतने अच्छे दोस्त भी नहीं है.
4: Shahid Kapoor, Kriti Senon and Rashmika Mandanna come together in this summer's hottest romantic comedy. Cocktail 2 in cinemas June the 19th.
6: Dulhan ke liye makeup.
4: For cinema listings and local info, visit Bakrania Media on Instagram.
7: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए.
8: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
7: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी.
8: गारंटेड.
7: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे. साउथ हॉल ट्रेवल.
8: फोन 02085748410.
7: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410. एट ऑल प्रोटेक्टेड.
0: Your favorite show on Leica Radio Midlands. You can now listen back at leicaradio.com. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. This is the Leica Radio Network, broadcasting across the UK. The sounds of love across the Midlands. The love sound. This is Leica Radio.